Super Duper Gaana from the movie Bazigar. Yes, this is one of the hit movie from the 90s. This ki awaaz thi Kumar Sanu and Alka Yagnik ji ki, and of course Shah Rukh Khan and Kajol again is movie. Or you know, jab se Bazigar, I think jo hai apna वो कहना मस्तान साहब जो तो उन्होंने जो है डायरेक्ट की थी, लेकिन ये मूवी के बाद से शाहरुख खान को जो अपना मशहूरत मिली है एज ए विलन का, उन्होंने ऑफ कोर्स ही वो हीरो बट जो है विलन एट सेम टाइम, लेकिन उसके बाद से जो जो उनको जो अपना जितना फेमस हुए, आई थिंक देयर वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज करियर, एंड नाउ ऑफ कोर्स ही इज स्टिल The king of Bollywood, yes. मैं आपको जो वेदर की अपडेट जो है देते चलूं, अपना वेदर आज जो है लाइक राइट नाउ इट्स जो है अपना 24 डिग्रीज, इज गोना गो डाउन टू 11. थर्सडे 28 एंड 12, फ्राइडे 24 एंड 9, सैटरडे 22 एंड 9, संडे 19 थोड़ा बारिश है 8, फिर मंडे 23 एंड 8, फिर ट्यूजडे 24 एंड 10, नेक्स्ट वन इज 21 एंड 10, थर्सडे 17 एंड 9, फिर फ्राइडे 17 एंड 6, बोथ डेज जो है चांस ऑफ शावर्स. तो आई थिंक ये जो वीकेंड है थर्सडे, इट्स लाइक टुमारोज गोइंग 28, इसके बाद इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स 28, 22, 19, 23, 24. आई थिंक 20s में होता है तो ठीक है, लेकिन जब यू 28-29 होता है आई थिंक यू फील्स लाइक बहुत गर्मी है. और यहाँ की आप बोलोगे यार कि फिर से जो है कंप्लेन करा जला, ना ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो गर्मी है बड़ी अलग है, पाकिस्तान इंडिया जैसी गर्मी नहीं है. और यहाँ पे जो धूप इतनी चुपती है, इट गोज इन टू योर स्किन बड़ा, तो यू नो इट्स गेट वेरी हॉट. अगर आप बाहर अपना वॉक करें तो ठीक है, लेकिन अगर इफ यू आर जो है गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, बट इट गेट्स वेरी वेरी हॉट, राइट. So, तो लीजिए अगला गाना. और मैं यू नो आई हैव अ वेरी अपने एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज, जैसे मैंने कहा था कि जो है अपना कनाडा का फैशन शो होने जा रहा है दिस फ्राइडे एंड संडे, तो उनके जो आई थिंक वन और टू डिजाइनर्स आर इन कैलगरी एज वी स्पीक, एंड अभी मुझे मैसेज आया कि दे आर कमिंग टू द शो. यस, दोज डिजाइनर द फेमस डिजाइनर सेलिब्रिटीज आर कमिंग

to the coffee with Jalal. So aapne jana kahin nahi hai. We're gonna like once they're here, so I'm gonna go live on Facebook as well. Lekin jab tak aap jo hai, of course, sunte rahiye yahan par Coffee with Jalal on Radio Susangam 94.7 FM. Agla gana aapki khidmat mein. How about this song? Mujhe thoda aapko jo hai, ha. कहो ना प्यार है फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स जो कि अपना ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी थी. तो लेट्स एंजॉय दैट. थैंक्स फॉर लिसनिंग. कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM.

0: इससे क्या होता है कि मार्केट ग्रोथ के अंदर इजाफा होता है
1: बिल्कुल.
0: तो कैलगरी जिस तरह का शहर है आप लोगों का
1: जी
0: कैलगरी को जाहिर सी बात है अगर हम जब पूरे कनाडा में किसी भी शहर का नाम लेते हैं और जहां पे पाकिस्तानी ज्यादा हैं तो वो लोग हर कोई कहता है जी मिसिसागा या टोरंटो
1: yes.
0: लेकिन अब कैलगरी का भी जो है आप
1: yes.
0: एक नाम होगा इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह बिल्कुल
0: लोग यहां पर आएंगे और अच्छा काम करेंगे
1: बिल्कुल ये जो है अपना बिग थैंक्स टू अगेन जो है हाला इन टीम को जी बिल्कुल यू नो इफ आई टेक यू बैक लेट्स से 10 15 इयर्स अगो जब से सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को अब जिस तरह जकड़ा है Now we can see, इसलिए हमें यहाँ पे 30, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन हम जो है जो मूवीज में देखे थे पाकिस्तान के जो अपना ड्रेसिंग ड्रामों में स्पेशली नाउ आती है सोशल मीडिया से उनको इतना एक्सपोजर मिल रहा है तो आपकी लाइफ स्टाइल में आपकी थिंकिंग में कितना फर्क आया फ्रॉम द सोशल मीडिया इम्पैक्ट
2: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल से ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि सबके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मेरा पर्सपेक्टिव ये है इसमें कि सोशल मीडिया क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं पाकिस्तानीज अब्रॉड इधर हम कनाडा की बात करते हैं हम यूके की बात करते हैं हम यूएसए की बात करते हैं व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान Though they're seeing that in social media, but they're not following it up.
1: No.
2: Because there is a lack of that product being available in, Calgary or Canada,
1: of course,
2: wherever.
1: Absolutely, yes.
2: So they still think that back in 90s, what people used to wear, Pakistan is still in that. Pakistan has advanced and been very liberal in creating good fashion around the town. Aur, mera khayal se usko lane ke liye, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी
1: है
2: और अवेयरनेस सिर्फ सोशल मीडिया के साथ नहीं इन रियलिटी भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो एक जेंजी बाइबल बन चुकी है और मेरा ख्याल से सोशल मीडिया के गुड एंड बैड फैक्टर्स दोनों हैं लेकिन अगर अवेयरनेस राइट ना हो तो उनका कोई फायदा नहीं
0: मेरे जवाब का जो है वो मेरे आपके सवाल का आधा जवाब जो मेरे दिमाग में था वो इन्होंने ही
1: इन्होंने दे दिया
0: क्योंकि वजह ये है ना कहते ना कि अब आधा गिलास खाली है आधा गिलास भरा हुआ हर किसी का एक अपना अपना तरीकेकार है कोई अगर सोशल मीडिया चीज है अच्छी चीज है लेकिन उसके फायदे भी हैं उसके नुकसान भी हैं ठीक है अब सवाल ये है कि कौन इससे किस तरीके से हैंडल कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ हाँ लेकिन चीजें इसके अंदर बहुत फास्ट हो गई हैं चीजें इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ठीक है अब कोई भी फैशन आता है वो ज्यादा अरसे तक जो है वो मेंटेन नहीं रहता आता है जल्दी आता है फौरन खत्म हो जाता है क्योंकि नई चीज उससे पहले तैयार खड़ी हुई होती है
1: जी, जी.
0: तो ये सब काफी चीजें हो गई हैं जो कि हमें समझे कि एक रेस है उस रेस के अंदर हम सब दौड़ रहे हैं और हम समझे कि जो सही दौड़ेगा वो कामयाब रहेगा
1: बिल्कुल एब्सोल्युटली यू नो जितना बिकॉज यू नो व्हाट वी सी कि अभी एक ड्रामा सीरीज में एक चल रहा है वो अपना वो डिजाइन है फिर नेक्स्ट में वो फिर से चेंज हो जाता फिर कुछ
2: देखें एआई ने बहुत चीजें भी चेंज की हैं सोशल मीडिया पे एआई के आने की वजह से रियलिटी इज बीइंग पुट इन बिहाइंड एंड थिंग्स व्हिच इज वेरी फ्यूचरिस्टिक यू सी दैट व्हिच इज नॉट रियलिटी जो सोशल मीडिया की रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है जो मेरी नजर पे है बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज बेस्ट अराउंड द टाउन is not being still showcased in the right manner.
1: Right.
2: उसके लिए opportunity और platforms बहुत जरूरी
1: है.
2: Designers who worked in the past and created this industry in Pakistan, आज उन designers की following कम होगी लेकिन उनसे बड़ा designer
1: नहीं होगा. कोई नहीं होगा. सही बात.
2: इधर हम अब note करते हैं कि following होने से designer अच्छा.
1: Yes.
2: It does not matter that how big is your following because it is a generation of AI. Anybody can create any following
1: Anything,
2: for you. But the right work has to be targeted here.
1: Absolutely.
2: कोई बात है awareness नहीं है कि कौन right है कौन wrong है social media का right use करना बड़ा
1: बहुत जरूरी है
2: बिल्कुल ऐसे
1: नहीं नहीं आई थिंक यू नो लाइक यू जस्ट डोंट गो फॉर द लाइक्स कि ये कितने लाइक्स आ रहे
2: हैं
1: लुक एट द क्वालिटी और डिजाइन जो है
0: एब्सोल्युटली और एक बहुत अच्छा एक कंपटीशन डेवलप जरूर हुआ है लेकिन उस कंपटीशन को पॉजिटिव एंगल में ले एक आम आदमी भी जो है ना अब घर से निकलता है तो ये देखता है कि नहीं यार मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट होना है ठीक है अब सोच में लोगों की जमीन आसमान का फर्क हो गया
1: बिल्कुल
0: तो अब मैं समझता हूँ कि जेन जी जो है अब इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती
1: है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हालाजी जी जब भी आपने ये व्हेन यू आर प्लानिंग क्या हमें ये करना है ये फैशन डिजाइन है और ये डिजाइनर्स आएंगे इनके बारे में आपका अपना पर्सनल क्या था बिफोर यू इनवाइटेड देम क्या आप सोच रहे थे क्या आपकी थिंकिंग थी
3: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई जस्ट मेट देम वी कनेक्टेड हम बहुत अच्छे नुमा ने बहुत हमेशा गाइड किया है समझा के रखा है हर चीज को
1: नाइस
3: इट वाज अ ग्रेट हेल्प even Hassan was really, really helpful

0: throughout the period, so it's great.
1: MashaAllah.
2: Hala ne jo hai, maine inko ek hi baat samjhai thi, Ghalib ka sher, ke aankh ka darya hai, doob ke jana hai. Asaan kaam nahi hai, ek event is tarike se arrange karna, ek mushkil kaam hai, lekin she did it, MashaAllah.
1: She did, no, no. I think she deserves everything what you can get from the city of Calgary. It's amazing. It's amazing. So, you know, like if it, jab se aajkal hum jo hai Pakistani drama, MashaAllah, अगेन सोशल मीडिया की वजह से उनको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं, बिलियंस में जा रहे हैं यूट्यूब पे. ऑफ कोर्स जो लाइक नो व्हाट आई लुक फॉर, जो हमारी फैमिली वगैरह देखते हैं डिजाइन, किस तरह हम कपड़े देखें, नाउ वी सी द डिजाइन इन बॉलीवुड एज वेल. आपको कभी ऐसा मौका मिला कहीं ऊपर कहीं बॉलीवुड में जाने का, या तो दुनिया भर में आपकी क्या फेवरेट जो है आपकी सिटीज है, द वन यू वॉन्ट?
3: Everybody has a very different market. My market is very unique and different. I work for a very niche market, and that's more into European and, you know, very Western style of clothing. Because after my education, it has been my target. Hamare Pakistan mein aur India mein bahut similarities hain. Culture, traditions and clothing has been a very trademark. Asian trademark has been there. To mujhe is tarah lagta hai ki dramas ne bahut si cheeze promote to ki hain, lekin at the same time it is still in the same genre that it has been in the past. Abhi bhi there is a lot of room for improvement that we are trying to create. और मेरा ख्याल से बहुत से डिजाइनर्स बहुत सी जगह पे दे आर वर्किंग इनटू दीस प्रोडक्शंस इन ऑर्डर टू मेक इट मच मोर बेटर. लेकिन मेरा ख्याल से टाइम के साथ ही डेवलपमेंट होती है. जिस तरह अगर देखा जाए, आप जब बॉलीवुड की बात करते हैं कि हमने कुछ दिखाया या नहीं दिखाया, दे हैव बीन अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स वेयर वी हैव शोकेस्ड विद अ लॉट ऑफ अदर सेलिब्रिटीज अराउंड द ग्लोब. लेकिन इम्पोर्टेंस हमेशा ये रही है कि वो दिखाया जाए जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो.
1: बिल्कुल
3: ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा पर्पस है. जैसे नुमान भाई को, अभी नुमान भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि रॉयल फैमिली के लिए काम करना इज नॉट दैट इजी, एंड मेकिंग देम ड्रेस्ड अप इज नॉट दैट इजी, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर. हम इंडस्ट्री में वी आर नॉट दोज हु वुड बी फाइटिंग विद ईच अदर कि यार इसने क्यों ऐसे किया और इसने क्यों नहीं ऐसे किया. इसका पर्पस ये होता है कि इंडस्ट्री में जो भी कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड इफ इवन वन इज डूइंग इट्स अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्री.
1: वेरी वेल, बहुत अच्छा.
2: अच्छा, मुझे आपकी बात से एक बात याद आई है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं और सेलिब्रिटीज हैं, वो हमारे लिए भी बाइज्जत एहतराम है. मैंने ये नोट किया है कि हमारे पास जब पाकिस्तान में होते हैं तो कहते हैं ना कि उर्दू में मिसाल घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है. माशाल्लाह जब यहाँ हम अवार्ड जब कनाडा में होता है, आपके टोरंटो में, तो इतना इज्जत दी जाती है, इतना प्यार दिया जाता है. उसकी वजह जो मैंने ये फील किया है कि जो यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनको एक नॉस्टैल्जिया है अपने, जिस तरीके से वो अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर है मौजूद, उनको बड़ी अपने पाकिस्तान की याद आती है सब कुछ. तो इस वजह से आप लोगों की मोहब्बत और चाहत जो है वो काफी ज्यादा है बनिस्बत हमके, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं. हमारी फीलिंग्स डिफरेंट है और आप लोगों की फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है. दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भी डिजाइनर होता है, जैसे हसन है, हसन की जो है एक अपनी कुछ काम के अंदर बहुत सारी जो है वो खासियतें, मेरी जो खासियत है कपड़े के अंदर वो है शेरवानी की, ठीक है. तो अगर मैं शेरवानी की बात करता हूँ तो इंडियन काम को और पाकिस्तान के काम को आप लोग खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत आला नस्ल की है एज कम्पेयर टू इंडियन. इंडियन जो है ना, अगर आप देखेंगे ना, वो चमकीले काम, सितारे, मोती, काफी उभरे हुए काम, लेकिन जो हमारी शेरवानियां, हमारी क्राफ्टमैनशिप, हमारा आर्ट जो कि खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ते, जो जरदोजी का काम करने वाले लोग हैं, आरी के काम करने वाले लोग हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं. हमने इस इंडस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है जिसकी वजह से ये सब चीजें चल रही हैं. हमारे जितने भी बड़े डिजाइनर्स हैं उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है. तो खैर, पाकिस्तान की क्राफ्टमैनशिप इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और मैं समझता हूँ कि इसका कोई मुकाबला नहीं.
1: इन और जो हमारे रेडियो शो पे आते हैं, हाला जानती है कि हमारे जो है सारी कम्युनिटी से लोग आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, फिजी, और सब पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं और वो सब यही बोलते हैं इतने अच्छे ड्रामे होते हैं, इतने जिस तरह के उनका जो अपना फैशन होता है, इनकी स्टोरी होती है, हम पेरेंट्स के साथ बैठ के हम देख सकते हैं. तो ऑफकोर्स दे वॉच एवरीथिंग. यहाँ पे हमारे जो स्पेशल इंडियन फ्रेंड्स बहुत है, लेकिन एवरीवन फॉलोस पाकिस्तान ड्रामा और बोलती है कि आप लोग के इतने कपड़े अच्छे होते, स्टोरी में इतना अच्छा होता है, और जिस तरह के आप लोग की जो डायरेक्शन है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉलीवुड साइड. लेकिन यू नो आपको जैसे पता है कि पाकिस्तानी ड्रामे और बॉलीवुड की मूवीज हमेशा मशहूर है.

0: लेकिन हमें यहाँ पे आए हुए 35 साल हो गए, लेकिन जब यहाँ आप आते तो हमारे यू नो जैसे ईद हो जाती है, हमारे तक मोहब्बत बढ़ जाती है। यू नो दैट्स व्हाट यू सी कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट आता है, बड़े बड़े जिस अपने राहत फतेह अली खान साहब आते हैं, या तो आतिफ असलम आते हैं, अली जफर भी आए थे, पैक था, इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना मोहब्बत आपको मिलती है। इसलिए कि हम वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस टू यू नो जब भी आप आए तो इंशाल्लाह आप बार बार आएंगे।
1: और मुझे इस चीज का अंदाजा है कि इस ये जो भी शो होने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कि हमें वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत लोग इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कैलगरी के अंदर बहुत ज्यादा प्यार मिलने की उम्मीद है, ना सिर्फ मुझे बल्कि हसन को भी और जो जो लोग पाकिस्तान से उन सबको।
0: जी जी बिल्कुल जी। हाँ आप कुछ कहेंगे?
2: और अच्छा सा शो देखें।
0: और
2: हसन ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया
0: है। जी तो एक बार फिर से फ्राइडे को 28 तारीख को डोर्स ओपन एट 5 o'clock फॉर द रेड कार्पेट और इवेंट स्टार्ट एट 6 o'clock एंड द टिकट्स आर ओनली 35, 45 and 65 राइट एंड जो इट इज अवेलेबल वो इवेंट ब्राइट पे जो है टिकट जो है ले सकते हैं और यू कैन कॉल मी एट 587-899-4786 एंड आई गेट यू द टिकट्स। बिफोर वी जस्ट गो ऑन जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, जो जो लोग आएंगे देखने के लिए आपको अपना इंशाल्लाह फ्राइडे को, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, एनी हिंट आप दे सकते हैं?
3: I would put in this work कि अगर हम उनको अभी बता देंगे तो उनके लिए फिर सरप्राइज
0: नहीं रहेगा बिल्कुल।
3: और as Hala said, there has been a lot of hard work put on this.
0: Lots, yes.
3: Yes, so we are here to make people see what Pakistan is all about.
0: Yes, cannot.
3: And work. It's not only Pakistan, as they have designers from other countries.
0: Yes.
3: So it's like a partnership between all the countries, or you could say it's a collaboration between India, Pakistan, people from North Arabia, yes, people from Canada. Mm. And together showcasing the skill is what is more beautiful than being an individual, you know. Yes, so that's very important.
0: Very well.
1: And yes, the Calgary is going to be experience the wonderful show, jo ek hamara Pakistan ka jo show hai, aur aap logon ko bahut maza aayega. To main tamam jo sunne walon ko ye kahunga ki aaye ticket khareedein aur aake show dekhein, bahut maza aane wala hai.
3: So I wanted to mention one thing. Yeah. Today we had planned something very interesting. People come over, dress with your best dress, because yes, we'll be giving the best dress award as well for the night.
0: Oh, awesome.
3: So okay. That would be fun.
0: Yeah.
3: And that's not normally done in the fashion shows, but right, as we're talking about fashion, so we are expecting some fashion in the audience as
0: yes,
3: well.
0: Yes, of course. No, aapse last question, you know, abhi aapne jaise kaha ki aap jo royal family ke liye bhi aap karte ho, so when you got the first call ki aapko karna hai, what was going on in your mind?
1: जी सबसे पहली बात है कि जब प्रिंस विलियम जो है वो पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा उनके लिए था कि और देखिए एक रॉयल फैमिली है, वो लोग अपने कपड़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ापन है कि उन्होंने एक शेरवानी को, जो कि हमारे पाकिस्तान का एक सकाफती लिबास है, उन्होंने उसको पहनना पसंद किया, तो उनके लिए डिजाइन करना शेरवानी, दैट वॉज एन ऑनर फॉर मी। और मैंने जो की वो आप इस वक्त सोशल मीडिया पे देखें, तो जो रॉयल फैमिली के लिए काम करना, मतलब इट्स फंटास्टिकली, मेरे लिए तो बहुत खुशी का है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह
0: सकता।
1: इट्स एन ऑनर, मतलब मैं जो, अगर मैं जितने भी अल्फाज इसके लिए कहूँ तो वो कम है।
0: बिल्कुल हसन भाई, नौन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, आपका वेलकम टू कैलगरी, वेलकम टू कैनेडा, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन फ्राइडे, एंड ऑल द बेस्ट, एंजॉय कैलगरी। Hala is amazing. I know she's an amazing host as well. Aapko bahut maza aayega.
1: She is.
0: Yeah, she's amazing. And thank you, Hala, for bringing them in. Thank you for doing this event. I know that's, you know, it's a badi baat. I know it's a hard work. Inshallah, everything will be paid off.
2: Inshallah.
0: Upar wale ke upar bharosa karke sab acha hoga, inshallah. Yeah, so we'll take a small commercial break. Break ke baad jo hai, I'll be right back. Aapse milte hain. To hum thode guest ke saath thode, you know, I'll take some pictures, then I'll post on the social media, taki aap aake join kare party on Friday, and it will be amazing. So let me take a small jo hai commercial break, and ek baar phir se aap dono ka bahut bahut shukriya. Hala, thank you so much.
1: Thank you.
0: And we'll be right back after this break.
4: लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ, इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत।

Alberta Healthcare. इनका फोन नंबर 8257600983. Oasis Smart Medical, जहाँ पर जो कि अपना they open 6 days a week. They take new appointments right now. New patients 587-617-4696. Mercedes Benz, Country Hills, Gaurav Sharma. He is there. He is amazing. He is Mahila. He's a manager there. Get your new Mercedes 403-903-6757. Punjab Insurance for Supervisor Life Insurance 403-404-3500. Mother India Restaurant 24 hours a day. They are open for 40 delicious item. Income phone number 403-936-7777. Pixel Photo Studio. अगर आपने family का अगर आपको जो portrait बनवाना है, business के लिए कोई pictures निकालनी है, passport के लिए pictures निकालनी है, अगर आपको अगर आपको photo printing करने हैं, print करने हैं, इनका phone number 403-947-0060. तो यह था आज का कॉफी जलाल. इंशाल्लाह मैं मिलूंगा अगले हफ्ते आपको फिर से. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह विल सी यू ऑन फ्राइडे, जब भी ये जो कैनेडा लाइफस्टाइल का जो अपना फैशन शो होने जा रहा है, इट्स ऑन दिस ट्यूसडे, सॉरी दिस फ्राइडे. डोर्स ओपन एट 5 PM विद द रेड कार्पेट फॉर द सेलिब्रिटी विद द सेलिब्रिटीज एंड फॉर सेलिब्रिटीज. टिकट्स आर ओनली 35, 45 and $65 और इट्स एट डेरा बैंक्वेट हॉल. तो इंशाल्लाह आई विल सी यू देयर. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा. जल्दी जाते थे एक बार फिर से जो है 90 का एक में जो है गाना आपकी खिदमत में लगातार चलूं. Here we go.

0: खिलाफ कार्रवाई कर दू, मैं तेन दूसरी स्टेट विच ट्रांसफर करा दू। वो सारे जज घबराए पे आ कि उत्थे किसम दा दबदबा इदां दा रखदा। उन्हें जिहड़े जज ने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस नूं, उन्हें तरीकां विच लिखियां ने कि मैं फलानियां फलानियां तरीकां नूं दो चिट्ठियां तुहानूं पहलां लिख चुका ते तुसीं कार्रवाई नहीं कीती, जबकि इस जज के खिलाफ कार्रवाई छेती की जानी चाहिए है। उन्हें यह भी लिख दिता कि यह जिहड़ा जज है राजस्थान दे विच चीफ जस्टिस लगा वह खुले तौर पर कहता कि मैं भारत के चीफ जस्टिस का बहुत नेड़ला बंदा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन्हें कहा एक हाई कोर्ट का जिहड़ा चीफ जस्टिस है वो ये आखे कि मैं देश के चीफ जस्टिस से इन्ना नेड़े हाँ कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह एक किस्म का न्यायपालिका से माड़ा प्रभाव दिता। बाकी सारे जज फिर यह सोचते हैं कि साड़ी तो कोई गिनती नहीं, यह तो भारत के चीफ जस्टिस के इन्ना नेड़े है कि जिदा मर्जी नुकसान कर दू। कहना मैं जो उत्थे गया तो बाकी दे जजा ने विहार बारे मेरे को बहुत शिकायत कीतिया कि सानू सारे ने बहुत तंग करता। कहना जे उत्थे रवे तो ये राजस्थान की हाई कोर्ट ठीक तरह काम नहीं कर सकती। एदा एको तरीका कि ये ट्रांसफर यह भी राजस्थान का ही है, इन्हू किसी होर सूबे च ट्रांसफर कर दौ, पोस्ट यो हो चीफ जस्टिस उत्ते रहना कोई फर्क नहीं पैंदा, इहदी थां ते किसे दूबे दूसरे सूबे का चीफ जस्टिस ला दो। तवलीन मैं तुहानूं दस्सां कि अगे भी इदां दीआं ट्रांसफरां हुंदीआं ने, साडे पंजाब दे कई जज दूजे सूबिआं ते जाके चीफ जस्टिस बने ने और दूजे सूबिआं ते साडे कोल आके भी बन गए ने। जिहड़ा अजकल भारत का चीफ जस्टिस है सूर्या कांत, वह भी पहला आसाम वाले पासे 12-13 साल किसी हाई कोर्ट च जज रहा, फिर उत्थे चीफ जस्टिस भी बनिया, फिर सुप्रीम कोर्ट च आया। यह रवायत आम तौर पर समझा जाता कि किसी भी जज न अपने सूबे दे विच लाउण तो परहेज किया जाए तो चंगा, क्योंकि उत्थे हुंदिया सांझा सेना निकलौंदियां, उन्होंने बहुत ही वारी जजा के अपने रिश्तेदार भी उत्थे प्रैक्टिस करते हुंदे आ, उत्थों बचाव किया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मसला काफी वड्डा बनता जा रहा
1: जी। पन्नू साहब, पंजाब दे विच 30 अगस्त तो MBBS दे दाखले शुरू होने हैं, ते उत तो पहला एक कंडीशन लाती है 20-20 लाख रुपये वाली, पहला तो सानू ये दसो भी कंडीशन की है ते फिर एदा असर जेड़ा वो किन्ना ते पै सकदा जी?
0: इत्थे दो किस्म दे मेडिकल कॉलेज ने, एक प्राइवेट एक सरकारी। जेड़े प्राइवेट ने उन्हां विचों भी कुछ कॉलेज इहो जे आ जिन्हां नूं पंजाब सरकार ग्रांट नेट दिंदी है ताकि वह कॉलेज चलते रहन, उन्हां वास्ते सरकार दीआं कंडीशनां मनना जरूरी हुंदा। जिहड़े बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज ने उन्हां वास्ते कोई जरूरी नहीं हुंदा। हुण जिहड़े गौरमेंट दे कॉलेज है इन्हां दी इक समस्या, इत्थे फीसां घट हुंदीआं, दाखले सौखे मिलदे आ, खर्चा बहुता नहीं हुंदा होस्टल वगैरह दा भी। इत्थे फिर इह गल आ जांदी है कि जिहड़े बच्चे पढ़दे आ MBBS करन डाक्टर बन, उन्हां तो एक बांड लिया जांदा कि इन्ने साल तुसीं पहला पंजाब सरकार दे अपने सरकारी हस्पतालां च नौकरी करोगे, ताकि जिन्ना खर्चा सरकार ने तुहाडे ते कीता तनखाह ते तुहानूं मिलदी रहनी है, उस खर्चे की भरपाई किसी ना किसी तरीके जिहड़े समाज ने तुहानूं डाक्टर बनाया तुसीं उहदे वास्ते कोई कर सको। इदां दीआं शर्तां कई बार लाईआं जांदीआं ने, और ये अज तो नहीं, जदों तो आजादी मिली है तो सरकारी कॉलेज बनने शुरू हुए उदों तो लाइया जांदियां सी। हुण गल ये हुई है कि अगे शर्त लगन लग पई सी कि जिन्हें MBBS का दाखला लेना वो 20-20 लख दे दो बांड जमा करावे। बांड इस करके हुंदे आ कि ट्रेनिंग करन तो बाद डाक्टर बन तो बाद इन्ना समा सरकार दे हस्पताल च नौकरी करेगा, ते जे नौकरी नहीं करेगा फिर ये बांड जेड़े जब्त कर ले जाएंगे, इस करके जमा करवाए जाते। इस वारी सरकारी कॉलेजों वास्ते एक नवी शर्त आ गई है कि 20-20 लाख के बांड को तो कोई समझदा नहीं, 20 लाख रुपये वड्डे घर वाले अजकल कुछ भी नहीं समझते, वो कहते जाते जानते। उन्होंने कहता कि 20 लाख के बांड भी नाल 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी अटैच कराओ

0: फिकर छोड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सीधे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसएस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696 कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
2: ग्रोसरी खरीदण लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
3: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
3: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
3: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222 ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
1: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उहनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
0: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सीधे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लैके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन

0: जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदिया ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असीं सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
2: ग्रोसरी खरीदण लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
3: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
3: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
3: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222। ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
1: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उहनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208।
0: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लैके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, अज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 587-617-4696।
4: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलया।
0: की होया?
4: बस पूछ ना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना 2 दिन।
0: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी अज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े।